तिन में एहु विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुबचन, सर्व्यापी राम संग रचना। जिन जाते तस्किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुकुमान करन हार, नानक करन करावन हार, प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सा मोही, आप सत किया सब सत प्रभ, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावैता करे विस्तार, तिस भावैता एक अंकार, अनिक कला लखी नहीं जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप पर पूर, अंतर गज से आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्वनैन आप इखन हारा, सगल समगरी जाका तना, पंजासा पी सुना, आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कह मादा लिप्तो रह, जो किश कह न सुआपे कह, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तल समाए, इसते होय सो नाही बुरा, उरै कहो हो किनै कछ करा, भला कर तू ते अतनी किया, पे जाने अपने जी की, आप साज धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराज, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए त सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक उह जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन अवन काय है स्वाव, जन कै संग चित आवै नाउ, आ मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कहो सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाउ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुनि उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सासा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्याग तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आव छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदारहु जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का इह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन मलीक, लाल इह रतन, सुनत कुमावत होत उदार, आप तरह लोके निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथै, नानक उदरे तिनकै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभही खेप हमारी, प्रभ की उस्तद करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान, सर्विच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबति उच पाए स्थान, बाहर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम सांत रिद नाम निद, बुद्ध ज्ञान सर्वतै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बीता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन के मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम तुन बानी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट प्राद साध संग मिटै, संत कृपा ते जमते छुट्टै, जाके मस्त कर्म प्रपाए,

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाकै वस है काम ते नाम सो ऐसा हर त्याई मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तैह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एहि मत दीनी जप हर भव जल तरना जह हर सिमरन पया तैह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एहि मत दीनी जप हर भव जल तरना सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन करते आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों हुन चटी है तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाहो सिरसा हंदे साहो

दुख उत्पुखै खाय चलियह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाउ साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे।

जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट।

तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सेख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तन कमै हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वस कैन कोई। एक बार जिन

दुष्ट दुख ते लिहों बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता। किल बिग सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पाव

दीनन की प्रतपाल करै नित, संत उबार गनी मन गारे, पाच पशु नग नाग निरानप, सर्व समय सबको प्रतपार, भुखत है जल में थल में पल में,

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परो उपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गल बात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तों वध जिन्नियां भी जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उसदी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ये हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी दे ने, कोई मेरिया अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, उच्छी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हां, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हां, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी होई हां, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकदा। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजां नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है, पर असी इस ते माण करिए, साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदाता नानक दास तुझे समझावत तिसे त्याग आन

उधम कर लागे बो फाती, बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ, पसम लगाए तीरथ बो प्रमते, सुखम दे बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका, अनक पात थाटे कर थटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका, अनक

0: जाता
1: सर्वन पाले सर्वन माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वन पुक्ता सर्वन जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वन काले सर्वन पाले
0: रुआल जन प्रसाद आदि मूर्त आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार
1: सर्व मान तिर मान देव पेव आदुदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल
1: जतर ततर विराजिए अवधूत रूप रिसाल
0: नाम ठाम न जा जाकर रूप रंग न रेख
1: आद मूर्त दान मूर्त अजोन आद सेख
0: देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग
1: जतर तंतर दिशा विशा हो फै

0: चक्र बकर फिरे चतर चक्र मानिए मुर्तीन।
1: लोक चौदह के बिके जग जा पै जे जा
0: आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जे थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
0: सर्व विशेष रचयो स्वयं गणन पंजन हार
1: काल हीन कलाश जुगत अकाल पुरख देश
0: तरम ताम सो परम रहत भूत लख पेश
1: अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम
1: आप रूप मीक अनुस्तद एक पुरख अवधूत
0: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: अंग हीन अपंग नातम एक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक
0: सर्व शास्त्र न जानिए जे रूप रंग अर रेख
1: परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित
0: कोट सिमरत पुराण शास्त्र नावे वो चित
1: मधुपाठ चंद्र प्रसाद गुण गान उदार में महापास।

0: सर्वत्र पैसे
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र अंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे
0: के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए
1: के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र

0: हरिफुल अजीम है रजाए यकीन है
1: अनेक तरंग है अभेद है अपंग
0: अजीजुल निवास है गरीबुल खिराज है
1: मुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है
0: प्रभुगत प्रभा है सजुगत सुधा है
1: दैवम स्वरूप है अपेदी अनुप
0: समस्तो परास है सदा सर्व

0: ये अचलन प्रकाश है कि अमितो सुभाष है, कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है, मधुपाचांत प्रसार मुन मन पर नाम गुन गन मुदार अनगन पर नाम मुन मन सलाम अनपव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुन गन पर नाम जल थल मुदाम
0: अंशिज अंग आसन अपांग जल थल अमंड दिस विश अपांड अनपव अनास ते तर
1: तुरास
0: ओंकार आद कथनी अनाद
1: काल खंड ख्याल गुर भर काल
0: कर कर पर नाम चित चरण नाम
1: अंजज गात अजज न बात
0: अंजज गात अनरंज पात
1: अंडूट भंडार अंडट पार
0: आठ ईठ तरम अत डीठ करम।

0: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अबू अजू अनास अकास
0: अगंज अपंज अलख अपख
1: अकाल दयाल अलेख अपेख
0: अनाम अकाम अगा अडा
1: अनाते परमाते अजोनी अमोनी
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्मन अपर्मन अगंजे अलेखे
0: भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परना में समस्तुल परना
1: से
0: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूपे सदा सचदानंद सत्रन परना से अजाय बेपूते गजायब गनी में चतर चक्र

0: भगवान मलेंगे,
1: श्री पद भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे,
0: वीर पार बड़े बडियार बछारे सार की थार पछैया,
1: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया,
0: नगारे गरान को तोरन हार सो बातन ही चकचार लवैया,
1: सार श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया,
0: दानव देव निंद निसाचर पूत पविक

0: पर सन फिरे जग सतर सवे अब लोग चपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र रात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजा देख दान अनेक स्वयं पर साज बैरेंगे।
1: महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जब

0: साज तो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
1: काहू ले पाहन पूंज तरियो सिर काहू ले लिंग गड़े लटकायो।
0: काहू लिखियो हर वाची दिशा में।

0: सदा साथ संभाले एहो करतम तुझे देखदा चला नाही तेरा नाले
1: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए
0: ऐसा काम मुले ना कीचा जित अंत पछोताइए
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले
0: कहे नानक मन प्यारे।

0: सब तू है जिन जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा किमी सच्चा मन वसाया।
0: जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सने आया।
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कह नानक जिसनो आप तुठा तिना

0: अंतर आत्मा संभाले।
1: आप छठ सदा रह पढ़ना गुरबिन अब न जाने कोए।
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
1: जे को गुरते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे।
0: पावे मुक्त हो न पावे मुक्त न होर थे कोई पूछो विवेक या जाए।
1: अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सत

0: पान पाए सके पद्मापत वेद तेव अपेद चारे
1: राजकत राजक रोग रुहान की रोजी नटारे
0: की जब तंग रंग पुजंगम पूत पवेख पवान बनाए
1: देव खबे अहमेर न पेव लख्यो परम से परमाए
0: वेद पुराण कतेब कुरान सेव तके कर हाथ नाए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद से श्रीपद मा पद पाए
0: आद अनंत गादत वैक सो पूत पवेख पवान अपह
1: अंत विहीन अनात्म आप अदाप अदोग अछिद्र अचे है
0: लोगन के करता हरता जल में धल में परता प्रव है
1: दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मा पते है
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पह
1: देवहीन स्नेह सबोतन नेह बिरकत।

0: ओम आकाश पताल रसातल जच पुचंग सबे से न्यावे
1: पाए सके नी पार प्रभा हमको नेति नेते वेद बतावे
0: खोल सके सभी कुछ सुरहार परे हर हाथ नावे
1: नारद से चुदरारन से रुमरारक से सब मिल गायो
0: वेद कतेम न पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ लायो
1: पाए सके नी पार उमापत से दसनाथ संतन त्यायो
0: ध्यान तरो ते को मन में जय को अमितो सबे जग छायो
1: वेद पुराण देव कुरान पेद निर्पाण सबे पछारे
0: पेद न पाए सक्यो अन पेद को खेदत है अन छेद पुकारे
1: राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे
0: आद अनाद अगाद अदेक अदेक जप्यो किल ही कुलता।

मैं कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो